दिलों का इश्क ही तो देता फिरता है गवाही, वरना बता खुदा होने का सबूत क्या है।

WCMC-FM, Holly Springs, 99.9 FM HD4, W270 DT Durham, 101.9 FM, WDUR Durham, 1490.

0: Farrell.
1: Yeah. भाई तेरा बस लिखत गाने हर दुनिया देती ताने बस इन दिक्कत पर जब गाना बज लगे सब सर हिलाने शौकीन चाहिए टिकटे चाहे होने देना शौक ऐसे मुझे गाली बकते पर इंस्टा पे मेरे साथ चाहिए फोटो घड़ी धीरे चलती हम तेज चलते भर डाला ओटू इनके फेस बनते इनके करियर से लंबे हम पे केस चलते ए

आप सुन रहे हैं रेडियो नारा 101.9 FM, 99.9 FM, SD4, 1490 AM, पक्का देसी पक्का लोकल।

नया साल, नई उम्मीदें, नए गाने, नए सपने, नई बातें नए साल पर, सब कुछ नया सिर्फ रेडियो नायरा पर।

WCMC FM Holly Springs, 99.9 FM HD4, W270 DT Durham, 101.9 FM WDUR Durham, 14.

सुनते रहिए रेडियो नायरा 101.9 FM 99.9 FM SD4 1490 AM पक्का देसी पक्का लोकल।

रेडियो सिटी पर सुनिए द हम्मा सॉन्ग, संग बाय जुबिन नौटियाल, शाशा तिरुपति, कंपोज बाय ए आर रहमान, रिक्रिएटेड बाय बादशाह एंड तनिष्क, एंड रिटन बाय महबूब।

आप सुन रहे हैं रेडियो नारा 101.9 FM 99.9 FM SD4 1490 AM पक्का देसी पक्का लोकल।

सुनते रहिए रेडियो नहरा 101.9 एफएम 99.9 एफएम SD4 1490 AM पक्का देसी पक्का लोकल।

to WCMC-FM, Holly Springs, 99.9 FM HD4, W270DT Durham, 101.9 FM, WDUR Durham, 1490.

आप सुन रहे हैं रेडियो नारा 101.9 FM 99.9 FM SD4 1490 AM पक्का देसी पक्का लोकल।

सुनते रहिए रेडियो नारा 99.9 FM HD4 101.9 FM 1490 AM पक्का देसी पक्का लोकल।

सुनते रहिए रेडियो नायरा 99.9 एफएम HD4 101.9 एफएम 1490 AM पक्का देसी पक्का लोकल।

नया न्यूज में नाम आता हर वीक, फिर भी जहां से गुजरूं हर बंदी के मुंह से निकले चीख। हाथ पकड़ पर दिल न लगा, जो कहती है करके दिखा, सुनने में आया है तू मरती है हम पे, मर के दिखा।

0: things black.
1: सुनत रहिए रेडियो नारा 99.9 FM HD4 101.9 FM 1490 AM पक्का देसी पक्का लोकल.

सुनते रहिए रेडियो नायरा 99.9 एफएम HD4 101.9 एफएम 1490 AM पक्का देसी पक्का लोकल।

सुनते रहिए रेडियो नायरा 99.9 FM HD4 101.9 FM 1490 AM पक्का देसी पक्का लोकल।

सुनते रहिए रेडियो नायरा 99.9 एफएम HD4 101.9 एफएम 1490 AM पक्का देसी पक्का लोकल।

अब सुनिए रेडियो नारा पर तीन गाने टकाटक, सुनते रहिए रेडियो नारा 99.9 FM HD4, 101.9 FM, 1490 AM, पक्का देसी पक्का लोकल।

0: सुनते रहिए रेडियो नायरा 99.9 एफएम HD4 101.9 एफएम 1490 AM पक्का देसी पक्का लोकल।
1: सुनते रहिए रेडियो नायरा पक्का देसी पक्का लोकल।

सुनते रहिए रेडियो नायरा 99.9 FM HD4 101.9 FM 1490 AM पक्का देसी पक्का लोकल।

सुनते रहिए रेडियो नायरा 99.9 एफएम HD4 101.9 एफएम 1490 AM पक्का देसी पक्का लोकल।

0: मैं पानी पानी
1: इमेज खराब काम गलत न्यूज में नाम आता हर वीक, फिर भी जहाँ से गुजरू हर बंदी के मुंह से निकले चीख। हाथ पकड़ पर दिल न लगा, जो कहती है करके दिखा, सुनने में आया है तू मरती है हम पे मर के दिखा। रहने दे मुंह बंद रख, आंखें जो कहती हैं कहने दे, बहुत रुकी है आज तू पानी बन के खुद को बहने दे। शुभ बादशाह।

सुनते रहिए रेडियो नायरा 99.9 FM HD4 101.9 FM 1490 AM पक्का देसी पक्का लोकल।

सुनते रहिए रेडियो नायरा 99.9 एफएम HD4 101.9 एफएम 1490 AM पक्का देसी पक्का लोकल।

सुनते रहिए रेडियो नायरा, पक्का देसी पक्का लोकल।

सुनते रहिए रेडियो नारा 99.9 FM HD4 101.9 FM 1490 AM पक्का देसी पक्का लोकल।

सुनते रहिए रेडियो नायरा 99.9 एफएम HD4 101.9 एफएम 1490 AM पक्का देसी पक्का लोकल।

अब सुनिए रेडियो नारा पर तीन गाने टकाटक, सुनते रहिए रेडियो नारा 99.9 FM HD4 101.9 FM 1490 AM पक्का देसी पक्का लोकल।

सुनते रहिए रेडियो नायरा 99.9 FM HD4 101.9 FM 1490 AM पक्का देसी पक्का लोकल।

सुनते रहिए रेडियो नायरा 99.9 एफएम HD4 101.9 एफएम 1490 AM पक्का देसी पक्का लोकल।

0: मैं पानी पानी
1: इमेज खराब काम गलत न्यूज में नाम आता हर वीक, फिर भी जहाँ से गुजरूं हर बंदी के मुंह से निकले चीख। हाथ पकड़ पर दिल न लगा, जो कहती है करके दिखा, सुनने में आया है तू मरती है हम पे मर के दिखा। रहने दे मुंह बंद रख, आंखें जो कहती है कहने दे, बहुत रुकी है आज तू पानी बन के खुद को बहने दे। शुभ बादशाह।

0: standard de Dirty Feelings.
1: सुनते रहिए रेडियो नायरा 99.9 FM HD4 101.9 FM 1490 AM पक्का देसी पक्का लोकल.

सुनते रहिए रेडियो नायरा 99.9 एफएम HD4 101.9 एफएम 1490 AM पक्का देसी पक्का लोकल।

सुनते रहिए रेडियो नायरा 99.9 एफएम HD4 101.9 एफएम 1490 AM पक्का देसी पक्का लोकल।

सुनते रहिए रेडियो नायरा 99.9 एफएम HD4 101.9 एफएम 1490 AM पक्का देसी पक्का लोकल।

अब सुनिए रेडियो नारा पर तीन गाने टकाटक। सुनते रहिए रेडियो नारा 99.9 FM HD4, 101.9 FM, 1490 AM, पक्का देसी पक्का लोकल।

0: सुनते रहिए रेडियो नायरा 99.9 एफएम HD4 101.9 एफएम 1490 एएम पक्का देसी पक्का लोकल।
1: सुनते रहिए रेडियो नायरा पक्का देसी पक्का लोकल।

सुनते रहिए रेडियो नायरा 99.9 FM HD4 101.9 FM 1490 AM पक्का देसी पक्का लोकल।

सुनते रहिए रेडियो नायरा 99.9 एफएम HD4 101.9 एफएम 1490 AM पक्का देसी पक्का लोकल।

न्यूज में नाम आता हर वीक, फिर भी जहां से गुजरूं हर बंदी के मुंह से निकले चीख। हाथ पकड़ पर दिल न लगा, जो कहती है करके दिखा, सुनने में आया है तू मरती है हम पे मर के दिखा। रहने दे मुंह बंद रख, आंखें जो कहती हैं कहने दे, बहुत रुकी है आज तू पानी बन के खुद को बहने दे। शुभ बादशाह।

सुनते रहिए रेडियो नायरा 99.9 FM HD4 101.9 FM 1490 AM पक्का देसी पक्का लोकल।

सुनते रहिए रेडियो नायरा 99.9 एफएम HD4 101.9 एफएम 1490 AM पक्का देसी पक्का लोकल।

सुनते रहिए रेडियो नायरा, पक्का देसी पक्का लोकल।

सुनते रहिए रेडियो नायरा 99.9 FM HD4 101.9 FM 1490 AM पक्का देसी पक्का लोकल।

सुनते रहिए रेडियो नायरा 99.9 एफएम HD4 101.9 एफएम 1490 AM पक्का देसी पक्का लोकल।

अब सुनिए रेडियो नारा पर तीन गाने टकाटक। सुनते रहिए रेडियो नारा 99.9 FM HD4 101.9 FM 1490 AM पक्का देसी पक्का लोकल।

वेलकम बैक दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो नायरा एंड दिस इज़ योर होस्ट वैष्णवी डूइंग हेलो वैष्णवी लाइव शो। और हम आज कर रहे हैं एक गेम खेल रहे हैं और वो है गेस द सॉन्ग। तो आर यू रेडी फॉर द नेक्स्ट सॉन्ग? तो हियर इट गोज। क्या उस गली में कभी तेरा जाना हुआ जहाँ

0: बताओ तुम्हें क्या मेरे साथ क्या क्या हुआ। आपको ये गाना गेस करना है, और अगर आपने गेस कर लिया है तो देरी किस बात की, आप कॉल करिए 919-999-8595 पर। और यू नो व्हाट, दिस सॉन्ग इज़ वन ऑफ माय फेवरेट सॉन्ग। मैं आपको थोड़ा सा हिंट दे ही देती हूँ, ये अरिजीत सिंह का गाना है और इसके आगे ही आपको पता चल जाएगा, मैंने गाया नहीं लेकिन वहीं पर है वो गाना, लाइक यू नो जस्ट अ वेरी क्लोज। तो ज़रूर ज़रूर आप गेस करिए और गेस करके हमें बताइएगा कौन सा गाना है। और तब तक के लिए आपको मिलता है, हम प्ले कर रहे हैं नेक्स्ट गाना विच इज़ कैलाश खेर का। बहुत ही पुराना गाना है बट सबका फेवरेट है।
1: प्रीत की लत मोहे ऐसी लागी

वेल वो था गाना ए आर रहमान जी का बरसो रे फ्रॉम गुरु. अमेजिंग गाना था ना. वेल आप सुन रहे हैं रेडियो नायरा 99.9 FM HD4 101.9 FM एंड 1490 AM पर एंड दिस इज लाइव शो हेलो वैष्णवी और ऑफकोर्स विथ होस्ट वैष्णवी जहां बातें होती है अनलिमिटेड और उन बातों के बीच में आज हम कर रहे हैं गेस द सॉन्ग. तो आर यू रेडी गाइज फॉर द नेक्स्ट सॉन्ग. आपको गेस करना है तो चलिए गाती हूँ मैं अभी. होपफुली मैं अच्छे से गा लूँ इसको. आवाज़ ठीक है.

0: है तुझसे अभी ता
1: थैंक
0: वंडरफुल
1: यू।
0: वंडरफुल, थैंक यू अमर, बहुत अच्छा गाया आपने, और थैंक यू फॉर गेसिंग द सॉन्ग एंड थैंक यू फॉर लिसनिंग टू द शो, बहुत अच्छा लगा। कहाँ से बात कर रहे हैं वैसे, मैं पूछना भूल गई आपसे। ओके, लवली, थैंक यू सो मच। वेल, इसी तरह आप सुनते रहिए, और बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और थैंक यू सो मच फॉर गेसिंग द सॉन्ग एज वेल।
1: थैंक यू सो मच।
0: ऑलराइट, थैंक यू, बाय बाय।
1: बाय।
0: वेल, तो ये थे अमर जिन्होंने गेस कर दिया सॉन्ग को। देखा, मैं बहुत आसान पूछ रही हूँ, तो सब लोग यू नो इजीली गेस कर सकते हैं, है ना। और इन्होंने तो गाया भी, कितना अच्छा गाया, वाओ, वंडरफुल। कहीं हर जगह छुपे हुए हैं छुपे रुस्तम, क्या करें अब। अब मैं भी छुपी हुई थी, तो मैंने सोचा चलो आज थोड़ा सा टैलेंट बाहर निकाल के दिखाई देते हैं, हम भी गा सकते हैं और आप भी सुन सकते हो। तो चलिए इसी के साथ, वेल, यू यू यू आर गेटिंग अ न्यू सॉन्ग, नीति मोहन का है, और वो है

0: Naira 101.9 FM Raleigh Durham. Also available on 99.9 FM HD4 and 1490 AM Pakka Desi. 99.9 Naira mein kho jao Pakka Desi.
1: वेलकम बैक दोस्तों. और देखते ही देखते 1 आवर क्या कैसे ख़त्म हुआ ऐसे मतलब पता ही नहीं चला है ना. और सब लोगों ने खूब अच्छे से गेस किया सॉन्ग को. सो वेल और एक 1 आवर हम लोग इसी गेम को कंटिन्यू करेंगे. तो चलिए नेक्स्ट सॉन्ग आने वाला है और सब तैयार रहिए और वॉल्यूम थोड़ा बढ़ा के रखिए. वेल ये गाना है दिल तो उड़ा उड़ा रे आसमां में बादलों के संग ये

पेड़ा बहुत ज्यादा गा दिया है मैंने, आई एम श्योर बहुत ज्यादा ज्यादा इजी होते जा रहा है ये गेम। अगर आपने गेस किया है तो आप हमें कॉल करके बता सकते हैं एट 919-999-8595 पर। और तब तक के लिए ये गाना आ रहा है कैलाश खेर का अगेन।

0: वेलकम बैक दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो नायरा एंड दिस इज़ हेलो वैष्णवी लाइव शो और मैं हूँ आपकी होस्ट वैष्णवी एंड हमारे पास है कॉलर जिन्होंने आई थिंक गेस कर लिया है अगेन, देखते हैं कौन है। हेलो
1: हेलो
0: हेलो, हाय
1: वैष्णवी,
0: हाय
1: हाय हाय,
0: किससे बात हो रही है मेरी?
1: दीपिका।
0: हाय दीपिका, हाउ आर यू?
1: आई एम गुड।
0: वेल, कहाँ से बात कर रहे हैं आप? लवली, ओके, एपेक्स के वासी हो, दीपिका इज ऑन एयर एंड आई एम श्योर आपने गाना गेस किया होगा, सो प्लीज गो अहेड एंड टेल अस दिस सॉन्ग का स्टार्टिंग क्या है और गाना कौन सा है।
1: गाना सिंघम मूवी का है एंड

0: दिल है था भी बड़ा बदमाश दिल ये तुझसे जुड़ा बदमाश दिल मेरी सुने ना
1: तुझ पे अड़ा।
0: या
1: यस एब्सोल्युटली, बिल्कुल सही जवाब। वेल,
0: थैंक
1: बहुत
0: यू।
1: अच्छा गाया आपने और आपको लिरिक्स काफी अच्छे से पता है, वेल डन। और क्या करती हैं आप दीपिका? वंडरफुल,
0: मैं आईटी में हूँ, सॉफ्टवेयर
1: ओह माय गॉड, थैंक गाय सिंगिंग अ सॉन्ग,
0: इंजीनियर। थैंक
1: दैट्स ग्रेट दीपिका। आई एम श्योर आप हमारा शो हमेशा सुनती हैं और आपको अच्छा लगता है, एंड आई एम श्योर यू आर एंजॉइंग द शो।
0: यस डेफिनेटली ड्यूरिंग ड्राइविंग आई ऑलवेज योर रेडियो
1: वंडरफुल,
0: नाइरा।
1: वाओ, थैंक यू। वेल, हाउ वाज योर डे?
0: माय डे वाज गुड। गणपति इज एट माय होम, आई एम एंजॉयिंग दैट।
1: या निमर्जन इज लाइक आई थिंक ऑन वेंसडे,
0: या 11th डे ऑन 25th।
1: 25th, ओह या 24th इज वेंसडे, ओके 25th। या भेजते समय, अब गणपति जी को भेजते समय वो थोड़ा सा जो दिल में दर्द होता है ना,
0: हाँ करेक्ट,
1: वो बहुत
0: मेरी
1: ही,
0: बेटी बहुत सैड हो
1: हाँ
0: जाती है।
1: या बच्चे स्पेशली, आई एम श्योर यू नो वो एकदम इतना लगाव हो जाता है उनको 11 दिनों में कि बस नहीं छोड़ सकते हैं वो। बट वेरी वेरी नाइस टॉकिंग टू यू दीपिका, एंड थैंक यू सो मच फॉर गेसिंग द सॉन्ग। आई होप यू आर एंजॉइंग एंड कीप लिसनिंग टू रेडियो नायरा। थैंक
0: या थैंक यू, थैंक यू, बाय।
1: यू, बाय बाय। तो ये थे दीपिका और उन्होंने गेस कर लिया है सही गाना। अब चलिए, अब नेक्स्ट गाना देखते हैं कौन सा आप गेस करेंगे। अब मैं ढूंढने लग गई हूँ कि कौन सा गाना मुझे आता है। ट्राई कर रही हूँ कि आपको मेरा गाना समझ में आ जाए। वेल द सॉन्ग इज,

आई थिंक बस इतना काफ़ी है। बहुत ये बहुत ही फेमस, और इस गाने ने रुला दिया था, इस मूवी ने रुला दिया था, इतना तो मैं हिंट दे ही सकती हूँ। तो आप गेस करिए, और एक और लाइन भी बता सकती हूँ इफ़ यू वांट टू गेस। मुझ

बस काफी है इतना हिंट। चलिए देखते हैं कौन गेस करता है इसको। इतना इजी और मैंने इतने सारे लिरिक्स बता दिए आपको। सो आई एम वेटिंग फॉर योर कॉल एंड टू कॉल एंड गेस दिस सॉन्ग। अगर आपने गेस किया है तो यू कैन कॉल एट 9199998595 पर। और तब तक के लिए आपके लिए आ रहा है ये गाना।

0: हेलो नमस्कार सत श्री अकाल आदाब, मेरा नाम है नायाब मिढा एंड यू आर लिसनिंग टू रेडियो नायरा. एंड गेस व्हाट, आई एम ब्रिंगिंग माय शो राजकुमारी, माय पोइट्री स्टोरी टेलिंग शो राजकुमारी टू रैले दिस अक्टूबर 2nd. कैच मी लाइव एट द गार्नर परफॉर्मिंग आर्ट्स सेंटर प्रेजेंटेड बाय ओहो प्रोडक्शंस. टिकट्स जल्दी जल्दी निकल रहे हैं तो ग्रैब योर्स टुडे. थैंक यू सो मच फॉर ऑल द लव ऑलरेडी. सी यू देयर. थैंक यू सो मच. जल्दी मिलते हैं कविताओं के साथ, कहानियों के साथ, किस्सों के साथ रैली में.
1: हम सब दिवाली इज ब्रिंगिंग अलाइव द फेस्टिवल ऑफ लाइट्स एंड यू डोंट वांट टू मिस इट. गेट रेडी फॉर एन अनफॉरगेटेबल सेलिब्रेशन ऑफ इंडियन कल्चर फीचरिंग स्पेक्टेक्युलर परफॉर्मेंसेस, डिलिशियस फूड, एक्साइटिंग शॉपिंग, फैमिली फन एंड सो मच मोर. Bring your family, bring your friends, and come experience the magic of Hum Sub Diwali. And calling all musicians, composers, and creative talents. Could you create the sound of Hum Sub? Enter our exciting Hum Sub theme song composition competition and let your music become part of the Hum Sub story. For complete details about the competition and Hum Sub Diwali, visit humsub.org.

0: है and now you can join me.
1: सुन रहा है ना तू, रो रहा हूँ मैं. सुन रहा है ना तू, क्यों रो रहा हूँ मैं. वेल डन आशुतोष, राइट? या बहुत अच्छा गाया आपने. एंड आपने एकदम गेस किया वो पहला लाइन, दैट्स अमेजिंग.
0: Yeah, because I'm singing some point of time in home, so I just memorized this complete lyrics. So I stop my car and I connect with you.
1: Oh wow, that's so nice of you, and thank you. It means a lot actually. जब ऐसे, you know, that it shows like आपने कार रोक के बात करने का चाहा, तो that's really so sweet of you. Thank you so much for calling. बहुत मजे करिए, ऐसे ही गाने सुनते रहिए और म्यूजिक को सुनते रहिए एंड रेडियो नायरा को सुनते रहिए.
0: श्योर मैम, थैंक यू.
1: ऑलराइट, थैंक यू आशुतोष, थैंक्स फॉर कॉलिंग, बाय बाय.

0: वेलकम बैक दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो नायरा एंड दिस इज हेलो वैष्णवी शो विद योर होस्ट वैष्णवी एंड यू कैन लिसन टू अस ऑन वेरियस प्लेटफॉर्म्स ऑन डिजिटल लाइक अलेक्सास हो या फिर हे सिरी हो या फिर ओके गूगल हो और 99.9 FM HD4 101.9 FM एंड 1490 AM पर भी आप हमें सुन सकते हैं। तो अब तक हमने इतने सारे गाने गा चुके हैं, थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं और हमारे साथ आज जुड़े हैं अरविंद महाजन जी। हेलो,
1: थैंक यू वैष्णवी, थैंक यू अगेन फॉर इनवाइटिंग मी रेडियो नायरा।
0: वेलकम टू द स्टूडियो अरविंद जी, कैसे हैं आप?
1: बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आई थिंक अभी 2 हफ्ते रह गए हैं तो हमारा जो एक्साइटमेंट बढ़ता जा रहा है। तो जस्ट टू रिमाइंड आवर लिसनर्स दैट अनुपम खेर एंड स्वरूप संपत वुड बी कमिंग टू राले ऑन October 2nd टू गिव देयर शो देयर प्ले जाने पहचाने अनजाने देयर musical comedy hit play which has already been played at 7 cities in US and several cities all over India.
0: Yes,
1: it is a phenomenal hit play. People are crying, people are laughing, people are getting emotional because this is the story of our own people but acted by Swaroop Sampat, Anupam Kher ji and Meghna Malik and other 26 people troupe which is coming together. But before we, you ask me for the question, I want to make this announcement here that, you know, the on my phone number, which is also the phone number to text for tickets, that is 571-241-6285. If people text me saying Anupam Kher tickets, and every 5th caller or text person who texts me gets free ticket, and the other people don't get disappointed. Every person who texts me up to

0: morning sun like a pearl upon the ocean. Come and feel me, come on, heal me.
1: वेलकम बैक दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो नायरा एंड दिस इज लाइव शो. हेलो वैष्णवी, और मैं हूँ आपकी होस्ट वैष्णवी, जहाँ बातें होती हैं अनलिमिटेड. और आज हम खेल रहे हैं गेस दी सॉन्ग. बहुत लोगों का ये फेवरेट होता है गेस दी सॉन्ग, मज़ा आता है ना, और आई थिंक सबको बहुत मज़ा आ रहा है. वेल, तो नेक्स्ट गाना है अभी, और आई थिंक आई डोंट नो हाउ मच आई नो अबाउट दिस लिरिक्स, बट मैं ट्राई कर रही हूँ.

आगे गाना आप बताओगे. पर बहुत ही इजी था ये, बहुत मतलब इट्स नॉट रीसेंट सॉन्ग, इतना मैं हिंट दे सकती हूँ. थोड़ा सा, थोड़ा क्या, थोड़ा ज़्यादा ही ओल्ड सॉन्ग है. और एक टाइम पे ये इतना इतना ट्रेंड करता था गाना, अब क्या बताऊँ मैं. आई थिंक अभी भी जब कोई सुनता है ना इस गाने को, तो वो लोग भी मतलब अभी भी सेम एनर्जी के साथ पीपल यू नो लिसन टू दिस सॉन्ग. लेट मी जस्ट गिव यू द लिरिक्स अगेन एंड यू कैन गेस इट.

ठीक है, अगर आपने गाना गेस कर लिया है तो आपको पता है कौन से नंबर पे कॉल करना है। इट्स 9199998595 पर। और अभी जो गाना आने वाला है वो है दीवानी मस्तानी, श्रेया घोषाल जी का गाना है। बहुत ही अमेजिंग गाना, बहुत ज़्यादा यू नो इट्स लाइक कितना मतलब सज के और जो डांस हुआ था ना, दीवानी मस्ती, वाह वाह, मस्तानी, सॉरी मस्तानी ऑफ कोर्स। और मैं इंतजार कर रही हूँ आपके कॉल का, अगर गाना गेस किया है तो बता देना एट 9199998595 पर।

0: Not every restaurant becomes an experience, but Soul Flavorscape of India is a journey through taste, tradition, and unforgettable flavors.
1: From crispy Delhi-style aloo tikki chaat, flavorful samosa chaat, to the signature Soul Dal Bukhara.
0: Enjoy fresh sizzling veg and non-veg starters paired perfectly with oven-fresh chur chur naan made with love and fresh ingredients.
1: Planning your birthday, wedding, graduation party, corporate gathering or family celebration?
0: Ask about customized catering menus at reasonable prices. Crafted specially for your event with authentic Indian flavors everyone will love.
1: And don't forget the amazing custom cakes, beautifully designed and perfect for every celebration.
0: Whether it's dinner with family, chai with friends or your next big event. Soul Flavor Escape of India. Escape into flavors. Experience the soul of India. Soul, where every dish is poetry. Visit us today at 301 Glenwood Avenue, 190, Raleigh. Call 919-900-7231 to reserve a table, order online or book catering services.
2: वेलकम बैक दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो नायरा एंड दिस इज़ योर होस्ट वैष्णवी. वेल, आज का जो शो हमने किया है दिस इज़ सो ग्रेट, गेस द सॉन्ग. तो अब मेरे को ये नहीं पता गाना किसी ने गेस किया या नहीं, बट या डेफिनेटली ये सबको पता है गाना. और ये गाना इट इज़ सो ईजी, आई गिव यू द यू नो जो मैंने लिरिक्स आपको बताया और उसका जो स्टार्टिंग का गाना है वो है चुरा के दिल मेरा गोरिया चली टिन टिन टिन टिन टिन टिन. ये था इसका स्टार्टिंग और आगे कुछ था मतलब उड़ा के निंदिया कहाँ तू चली. तो उसके बाद मैंने गाया था

चली। तो ये था गाइस, ये था लास्ट गाना आज का, और आई एम श्योर, आई एम होपिंग दैट आप सबको ये बहुत मज़ा आया होगा इस शो में। एंड और थैंक यू सो मच फॉर द पीपल, जिन सब लोगों ने गेस किया गाने को एकदम सही, मज़ा आया ना। वेल, अगर गाने में थोड़ा इधर उधर हो गया हो तो प्लीज़ आई एम सो सॉरी, जितना आता था उतना गा दिया मैंने, और बट आई एम सो ग्लैड कि सब गेस कर सके, यू नो दैट्स इम्पॉर्टेंट गाइस। तो देखते देखते 2 घंटे यूं चले गए कि पता ही नहीं चला हमें, और मुझे स्पेशली बहुत मज़ा आया आज का शो, एंड आई एम श्योर आप सबको, अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ आप हमें इंस्टाग्राम पे DM करिए @RadioNaraUSA पे, ताकि हमें पता चले कि आपको शो आपको मज़ा आ रहा है, या फिर अगर आप चाहते हैं कोई टॉपिक पे हम बात करें, यू नो यू वांट टू रियली हियर इट, और अगर आपके पास कोई भी आइडियाज़ है तो प्लीज़ फील फ्री टू DM us @RadioNaraUSA, या फिर आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं info@RadioNaira.com, info@RadioNaira.com, यस, या फिर आप हमें कॉल करके बता सकते हैं @919-999-8595 पर। तो ये था आज का लास्ट सेगमेंट, एंड थैंक यू सो मच, एंड कल का शो है हमारी प्यारी सी ज्योति अगेन, आज की शाम ज्योति के नाम, जो लेकर आएंगी कल 5 से 7 बजे के बीच में, और मज़ेदार टॉपिक के साथ वो आएंगी, एकदम हिला देती हैं वो माइक जब पकड़ती है तो तो वो आएंगी कल, तो मिस मत करिएगा, बहुत मेहनत करती हैं वो अपने स्क्रिप्ट पे, और यू नो द वे शी ब्रिंग एवरी वीक शी कम्स अप विद द न्यू टॉपिक, और जो गाने की लिस्ट है, वाह क्या बताऊँ मैं, हमारी ज्योति है वो, तो डेफिनेटली वो तो होगा ही। और कल आपने सुना था अर्पित को, एंड देन यू हैव आई थिंक फ्राइडे, वाह वीकेंड भी आ गया, वाह यार ये दिन ना पता ही नहीं चल रहा है कैसे चले जा रहे हैं, मतलब बस यूं ही हमने सोचा आज तो मंडे था और आ गया फ्राइडे, वाह एकदम, मतलब और काम तो मतलब वैसे ही है लिटरली, वो जो अपने एक अब जो भी डैशबोर्ड यूज़ करते हो उसमें जो हमारे टास्क लिस्ट होती है कभी ख़त्म ही नहीं होती है, लिस्ट करते जाते हैं पता नहीं क्या हो रहा है, और बस वीक ख़त्म, महीना ख़त्म, साल भी ख़त्म होने वाला है, और अभी से आई थिंक सब ने शुरू कर दिया होगा अपने रेजोल्यूशंस लिखना जो हर साल करते हैं एक रिचुअल की तरह, और जो कभी फॉलो नहीं करते, अगेन अनदर रिचुअल राइट, और सबसे पहला होता है मैं जिम जाने वाली हूँ। आई डोंट नो आप लोगों का क्या होता है, मेरा तो हर साल ही होता है मैं जिम जाऊंगी सबसे पहले, यू नो आई नीड टू टेक केयर ऑफ माई हेल्थ, आई नीड टू बी, अब मैं सेंट तो नहीं बन सकती इन सब के बीच में, ऐसे रेजोल्यूशंस लिखते हैं हम लोग कि क्या मतलब, वो जो लिखते टाइम जो मोटिवेशन होता है ना, जान फर्स्ट को जितना नहीं उठते हैं ना हम लोग वो मोटिवेशन की धजिया वहीं पर उड़ गई होती है राइट। वेल, आप सबसे बात करके बहुत मज़ा आया, जो भी हमें सुन रहे हैं थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू रेडियो नायरा, एंड हमेशा मैं कहती हूँ कि यू नो वेल ऑलवेज बी हैप्पी एंड बी काइंड, एंड जितना हो सके दूसरों की मदद करिए, और फ्रेंड्स बनाते जाइए, और एंजॉय करिए अपनी लाइफ को, और हाँ फ्राइडे के बाद होगा सैटरडे, दैट्स सैटरडे अगेन इट्स अ वैन शो, दिल से देसी बिटवीन 12 to 2 PM, वो काफ़ी सारे इवेंट्स लोकल इन्फॉर्मेशन लेके आते हैं इस स्टूडियो में आप सबको बताने के लिए, सो डेफिनेटली मिस मत करिएगा। एंड देन देर इज़ संडे ऑफकोर्स गीत बाज़ार, राइट, गीत बाज़ार जो बहुत सालों से, बहुत ज़्यादा आई थिंक डेकेड्स बोलूँ क्या बोलूँ मैं, बहुत ही सालों से जो चल रहा है, और कितने सारे लिजनर्स हैं गीत बाज़ार के, वाओ अमेजिंग जो शो कर रहे हैं अफरोज ताज एंड जॉन कार्डविल, अमेजिंग शो चलता है उनका संडे को बिटवीन 10 to 12, और जो लोग सुबह में मिस करते हैं ना, सो डोंट वरी वो रात में भी चलता है राइट 10 to 12, सो उसके बाद होगा ऑफकोर्स नेक्स्ट वीक शुरू हो चुका है अपना, मंडे से फिर वही चलो ऑफिस और काम करो, टास्क लिस्ट देखो शुरू होगा, लेकिन ट्यूसडे के साथ अगेन विद अ ब्यूटीफुल वॉइस हमारी प्राची आ जाती है शो में बिटवीन 3 to 5, ज़रा सुन ज़रा, यस, एंड देन द वेडनेसडे आर अर्पित, इधर उधर की बातें मेरा माई फेवरेट, एंड थर्सडे आप सबको पता है क्या है, वो है मेरा शो हेलो वैष्णवी। तो चलिए तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, और जैसे मैं हमेशा कहती हूँ मुस्कुराते रहिए। वेरी गुड इवनिंग गाइस, साइनिंग ऑफ, दिस इज़ योर होस्ट वैष्णवी।

WCMC FM Holly Springs, 99.9 FM HD4, W270 DT Durham, 101.9 FM WDUR Durham, 1490.

गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आप सुन रहे हैं रेडियो नायरा पर निर्वाणा नाइट्स और मैं हूं सबके दिलों का चिराग। मेरा नाम है आरजे पराग। 7 से 10 में रहता हूं आपके साथ, मिटाता हूं आपका स्ट्रेस एंड बनाता हूं आपके मूड को रिफ्रेश। वेल, कैसे चल रही है आज की आपकी ये इवनिंग? हर तरफ, जैसे मैं डे फर्स्ट से कह रहा हूं, जब से बाप्पा का आगमन हुआ है तब से हर तरफ बस एक ही नारा गूंज रहा है, एंड वो है गणपति बाप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। वातावरण जो है वो काफ़ी भक्तिमय हो चुका है, हर जगह पे रौनक जो है वो छाई हुई है, और इसी प्यार भरे माहौल में इतनी पॉजिटिविटी है कि मैं क्या बताऊँ। ओवर थिंकिंग, स्ट्रेस, एंजाइटी तो हो ही नहीं रही है। ऐसे पावन वातावरण में एंजॉय करते हैं इस शाम का यह पहला गाना। बने रहिएगा रेडियो नायरा पर, पक्का देसी पक्का लोकल।

0: दो अक्टूबर को क्या हुआ था? मूवी देखी थी, पाव भाजी खाई थी, पंजी गए थे।
1: रॉन्ग। 2 अक्टूबर को गरबा नाइट है।
2: अरे भूली गया,
1: आ डेट तो याद रखवानी छोए। गरबा लवर्स, आर यू रेडी? ऑन अक्टूबर बीजी रिधम अने रास लेने आवे छे गरबा नाइट। चनिया चोड़ी अने केडियू रेडी राखो, एपेक्स मा थवानी छे फुल ऑन गरबानी धमाल। जॉइन अस फ्राइडे अक्टूबर 2nd एट 7 PM एट हवेली एपेक्स। डांस टू द इनक्रेडिबल बीट्स ऑफ अमृता मंके एंड निमेश नगर विथ लाइव म्यूजिक, डिलिशियस फूड, फैमिली, फ्रेंड्स एंड रात भर गरबानी मौज। अर्ली बर्ड टिकट्स ओनली अंटिल सितंबर 7।
0: टिकट्स ऑन सुलेखा और चेक द रिदम एंड रास फ्लायर ऑन रेडियो नायरा फेसबुक, इंस्टाग्राम और radionaira.com। वन बीट, वन सर्कल, वन कम्युनिटी।
3: शॉपिंग फॉर योर नेक्स्ट कार? LeafCars.com puts everything in one place, so you can search, compare, and buy with confidence. Choose from thousands of new and used vehicles, backed by our trusted network of local dealerships. With expert service, convenient locations, and flexible buying options, LeafCars.com makes the entire process simple. Start online and drive home with peace of mind. LeafCars.com. It's easier.
4: When was the last time your apartment community had a full-size climbing wall, retro arcade games, and a sports bar? Not just a leasing office and a mailroom. Welcome to Novel Morrisville, located right next to the Weight Competition Center. When you're off the clock, grill out at the outdoor chef stations, relax by the resort-style pool, or recharge at the on-site coffee shop. Enjoy a half-mile trail, a 2,880-square-foot private dog park, and a pet spa. Plus modern studio, 1, 2, and 3-bedroom homes. For a limited time, receive 10 weeks free base rent, plus an electronic gift card of up to $1,300 when you tour and lease this week only. Visit 909 Athletic Lane in Morrisville. Call 984-465-7758. Or explore novelmorrisville.com today. Novel Morrisville, your version of play starts here. Offer available on select homes. Minimum lease term applies. Other costs and fees are excluded. Contact the leasing team for complete offer details.
5: Harmeet, तुझे देख के पता है क्या लगता था? कि तू कुछ बहुत बड़ा करेगा. कितना potential है तुझमें? क्या हो गया है? कुछ बन क्यों नहीं पाया तू?

0: बस का नहीं था।
1: तो तू अपना आलस छुपाने के लिए झूठ बोलेगा?
0: हाँ, झूठ में क्या बुराई है?
1: क्या बुराई है किसी सच्चे आदमी से पूछना?
0: सच्चा आदमी तुझे नहीं पता क्या?

0: I'm me on the mic, writing what I feel.
1: वेल एंजॉय किया आपने ये गाना, गाना था वाकई में काफी बेहतरीन, जिसने सेट कर रखी है इस इवनिंग की वाइब। आप सुन रहे हैं रेडियो नायरा पर निर्वाणा नाइट्स, और अब रुक करते हैं कि लोकल खबरें क्या है। तो पहली लोकल खबर ये है कि रैली के सिटी लीडर्स रैली डाटा सेंटर मॉरेटोरियम पर 6 महीने का अस्थायी प्रतिबंध लगने पर विचार हो रहा है। इसके लिए ड्राफ्ट तैयार करने के निर्देश गए हैं, और इस पर जो आखिरी फैसला है वो अक्टूबर की मीटिंग में होगा। लास्ट टाइम भी मैंने आपसे डिस्कस करा था कि शायद रोक प्रतिबंध जो है वो रख सकते हैं, एंड इसके बारे में विचार विनिमर्श जो है वो चल रहा है ऑलरेडी। सो लेट्स वेट अराउंड अक्टूबर एंड तक, उसके बाद रिजल्ट सामने आएगा ही, और जैसे ही रिजल्ट सामने आता है आई विल लेट यू नो। फिलहाल एंजॉय करते हैं अगला ही गाना।

पीढ़ियों से हम निभाते आए हैं 22 कैरेट खरा रिश्ता। आप भी एक नए रिश्ते की शुरुआत करें। राज ज्वेल्स नॉर्थ कैरोलिना

आप सुन रहे हैं रेडियो नायरा पंडिरवाना नाइट्स एंड स्कूलों में सुरक्षा के लिए बड़ा बजट। ये बहुत ही अच्छी खबर आज लेकर आया हूँ। वेक काउंटी के स्कूलों में सुरक्षा बढ़ाने के लिए लगभग 4.7 मिलियन डॉलर का बजट पास हुआ है। इससे क्लासरूम के दरवाजे जो है वो मजबूत किए जाएंगे और नए सिक्योरिटी कैमरे भी लगाए जाएंगे। ये बहुत ज़रूरी है, बच्चे सिक्योर होना बहुत ज़रूरी है। एंड अगर बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन मजबूत हो रहा है, जैसे कि दरवाजे मैंने आपको कहा, तो ये काफ़ी अच्छी बात है। सीसीटीवी कैमरे तो यार नीड ही है, वो तो चाहिए ही, मतलब उसके बिना तो कुछ है ही नहीं सिक्योरिटी का, मतलब है ना। तो ये काफ़ी अच्छा है और अच्छी चीज़ें हो रही है। 4.7 मिलियन डॉलर का बजट जो है वो काफ़ी अच्छा खासा बजट भी खर्च हो रहा है। अच्छी खबर है, एंजॉय करें।

आप सुन रहे हैं रेडियो नारापन निर्वाणा नाइट्स एंड कैरी इलाके में सोमवार को पानी की मेन पाइपलाइन फट गई थी, जिससे 50,000 लोगों को पानी उबाल कर पीने को कहा गया था। आज जांच के बाद अफसरों ने बताया है कि नल का पानी अब पूरी तरह साफ और सुरक्षित है, अब उबालने की जरूरत नहीं है। तो जब कंस्ट्रक्शन होता है तो थोड़ा बहुत पानी में कीटाणु और ये सब चीज़ें रहती है, उबाल कर पीने में क्या है ना, लेकिन अब आप बेझिझक पानी जो है वो पी सकते हैं क्योंकि पानी काफ़ी सुरक्षित पाया जा रहा है एंड कोई दिक्कत नहीं है। ये चीज़ें तो बताकर आती नहीं है, लेकिन आने के बाद डटकर सामना करने में ही भलाई है, ऐसा मुझे लगता है। कैसे चल रही है आपकी आज की ये शाम एंड कैसे चल रहा है आपका गणेश फेस्टिवल, मुझे बताइएगा ज़रा। फिलहाल एंजॉय करते अगला गाना, बने रहिएगा रेडियो नारा पर, पक्का देसी पक्का लोकल।

आप सुन रहे हैं रेडियो नायरा पर निर्वाणा नाइट्स, एंड जैसे कि मैंने पहली ही खबर बताई थी, एक बार फिर से दोहराना चाहूंगा कि रैली के बड़े नेता शहर में डेटा सेंटर्स बनाने पर 6 महीने की रोक लगाने की प्लानिंग कर रही है, पर आखिरी फैसला अगले महीने के अक्टूबर मीटिंग में होगा। मतलब अब तक चल रहा है कि लाइक पानी का जो दिक्कत होती है, उसके बाद जो वेस्टेज होता है, नेचर को जो हानि पहुंचती है, वो ना पहुंचे इसके कारण रोक लगाई जा सकती है। लेकिन पूरी तरह से रोक लगाई जाएंगी या नहीं, आखिर में होने वाला क्या है, ये तो अक्टूबर एंड में ही हम लोगों को पता चलेगा। तब तक के लिए आपको थोड़ा पेशेंस रखना होगा, एंड अगर नुकसान हो रहा होगा इन चीज़ों की वजह से तो डेफिनेटली रोक जो है वो लगाई ही जाएगी। तो एंजॉय करते हैं अगला एक गाना, आप सुनते रहिएगा रेडियो नायरा, बने रहिएगा रेडियो नायरा पर।

MCFM Holly Springs, 99.9 FM HD4, W270 DT Durham, 101.9 FM WDUR Durham, 1490.